0: हेलो हेलो,
1: हेलो, इसे तासे कंजूरी है दूसरी स्टूश
0: मींद रखे
1: ना साता प्रैक्टिस चला चमेश्वर इनसे साथ में वो यारों ने स्टूल ऑफिसी अस्पताल की जो जुलास रूमे मींद है हो जाऊं तो जो इस चला तो बंदी बस अगेटिव फिर लाइक उल्टी द अन्ना मेरी minden hozzám tartozó halott és felajánlom, jó tevőm, rossz tevőm, mindenkire nagy világon, László Margit néni, Csíkszeredában,
0: köszönjük szépen a hívását, imádkozunk mi is sokan Anna néni gyógyulásáért, innen is küldjük neki az imádságainkat, és sok erőt, kitartást kívánunk.